0: घर आजा परदेसी डॉट लाभदेसी डॉट इन
1: रेडियो बांग्लादेश डॉट कॉम विशेष बांगाली अभिनव हाइपरलिंक।